बैठो। प्योर हार्ट शोस पाथ टू गुडनेस, प्योर हार्ट कन्फर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर ऑन अर्थ। द प्योर हार्ट अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दिस गुड वर्ड।

साई राम डियर लिसनर्स, भगवान बाबा सेज डोंट वॉक इन फ्रंट ऑफ मी, आई मे नॉट फॉलो, डोंट वॉक बिहाइंड मी, आई मे नॉट लीड, वॉक बिसाइड मी एंड बी माई फ्रेंड. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बिफ्रेंड गॉड एंड रिमेन विथ हिम फॉर एवर. We can afford to lose everything in this world, but not God, because He alone is our true friend for eternity. So how to develop this close relationship with God? Bhagwan Baba explains this in a beautiful discourse delivered during Dasara celebrations in the Purnachandra Auditorium in Prashanti Nilayam on the 11th of October 1986.